0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्घ आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: गरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
2: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनान्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
1: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
2: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
1: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
2: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।

0: मुका पिए रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटा का आज था, का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उक्रम स्वागत बा खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख विवाद के पेशी 22 गति के लग सरल सर्वपश्चिम प्रदेश सरकार के आंतरिक मामला के बजेट शिक्षा में टीकापुर में बजेट न्यून मनसून में वर्षा से फिर तातुल गर्मी बढ़ल पात से जनजीवन प्रभावित रोपाई करना समय में कैलाली में डीएपी मल के अभाव किसान उकरण समस्या। पूरा खबर टीकापुर नगर पालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख के बनना कहना विषय में विवाद सर्वोच्च अदालत से हेरना नहीं भेल पाछे कहती सुनवाई सार गेले खो अदालत में मुद्दा के पालन नएल पाछे असार 22 गति के लाग पेशी तोक गिलक टीकापुर नगर पालिका के कानून अधिकृत केशव बहादुर थापा जानकारी दिले बाटे 2083 जेठ 14 गते कार्यपालिका में बहुमत सदस्य से टीकापुर नगरपालिका की कार्यवाहक नगर प्रमुख में वार्ड नंबर 6 के वार्डाध्यक्ष बलिराम चौधरी है चुनाव पाछे यहाँ कार्यवाहक नगर प्रमुख राम बहादुर नागर जी मुद्दा लेके अदालत गए रहें। बलिराम चौधरी कार्यवाहक नगर प्रमुख बनैना निर्णय समेत कार्यान्वयन नहीं करना अल्पकालीन आदेश देती अदालत से दोनों पक्ष है बुझाई पर्ना रलगोर से असार 8 गते पक्ष उपस्थित होना कहके टोकल रहा असार 8 गते के अदालत के निर्णय नहीं भेल पासे टीकापुर नगर पालिका के आर्थिक वर्ष 2083-84 के नीति कार्यक्रम और बजट लन्ना कार्यतालिका प्रभावित होती रह नगर पालिका की आगे असार 5 में नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करना कहके तैयार हुईलक नगर सभा के अधिवेशन के पहल बैठक प्रभावित हो सकल बा नेपालके संविधान अनुसार स्थानीय तहके असार 10 गति नीति कार्यक्रम और बजेट लाने पर्न व्यवस्था रहल बा टीकापुर नगरपालिकामा निर्वाचित नगर प्रमुख और उपप्रमुख हाल पदमा बहाल नै रहल पाछे कार्यवाहक नगर प्रमुख होइनमा कार्यपालिका सदस्यहरूकन बीच प्रतिस्पर्धा चलती रहल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेटमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय से बजेट शिक्षा और सामाजिक संघ संस्था के भवन बनैनामा विनियोजन करल पागिल बा आर्थिक मामिला मन्त्रालय के सार्वजनिक करलक आर्थिक वर्ष 2083-84 के वार्षिक विकास कार्यक्रम में उल्लेख रहल अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालय से करीब 19 करोड़ बजेट मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में लम्कीचुहा नगरपालिका में विद्यालय और संघ संस्था में दार्गिलवा यमुना विभागीय मंत्री से फे असंतुष्टि जनाइती रहल बाटे मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह निर्वाचन क्षेत्र लम्कीचुहा नगरपालिका के क्षेत्र में समेत ओहरो लागल बा निर्वाचित विनियोजित बजेट अनुसार ई क्षेत्र में पूर्वाधार विकास कार्यालय में कार्यान्वयन हुना करके 61 करोड़ 68 लाख रूपया शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय से 10 करोड़ 6 लाख रूपया खानेपानी में 23 करोड़ 52 लाख रूपया सामाजिक विकास मंत्रालय सामाजिक विकास कार्यालय कार्यान्वयन होना करके 21 करोड़ 66 लाख रूपया विनियोजन करल बताया गया। 3 मंत्रालय 3 कार्यालय से केल लम्कीचुहा नगरपालिका के मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में 1 अरब 36 करोड़ रूपया बजेट विनियोजन करल देख गिलवा टीकापुर नगरपालिका में विकास बजेट में 20 करोड़ फे समेत नहीं देखाइल पाछे यहां के नागरिक हुकरा चित्त दुखाइल बाटे दैनिक 600 से ढेर बेरमिया सेवा लेती रहल टीकापुर अस्पताल में तत्कालीन टीकापुर विकास समिति के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना के देलक सेवा पाछे कोयका के सहयोग में बनल छोट छोट समेत भवन मन सेवा देती रहल बा हाल प्रदेश माठत में रहलक टीकापुर अस्पताल के सहज रूप में सेवा प्रदान करना समेत भवन के अत्यधिक भवन के आवश्यकता रहल बा वर्षों पाछे ई पटक प्रदेश के भवन निर्माण के लग बजेट विनियोजन करले से फेन बजेट रकम 5 करोड़ के रहल बा टीकापुर नगर पालिका में नागरिक समाज टीकापुर के संयोजक भीमराम चपाई टीकापुर में विगत नियमित दोहरेतिरलक प्रतिक्रिया देती रहल बाटे टीकापुर में बजेट विनियोजन यहां के निर्वाचन प्रदेश सभा सदस्य बेखबर जस्त हुईबाट 2083 जेठ 17 गते सुरबचन के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में सक्कू दल के सांसदीय दल के नेता उपनेता हो सचेतक सहभागी बैठक में करलक निर्णय विपरीत बजेट विनियोजन करल बताइल बा। खोज खबरमा एकघरी विश्राम विश्राम पाछल फेर सेबी सुन्तिरबी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: टिकापुर नगरपालिकाको निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड बारे अत्यन्त जरूरी सूचना। टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको स्थान मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। तपसिलका ओडाहरूमा सञ्चालन हुने सेवाहरू वडा नम्बर 3 असार 9 गते रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 1 असार 10 गते ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
0: नेपाल प्रवेश करलाक यी वर्षा के मनसून प्रणाली भित्रैटी कमजोर रलागोर्से शुरूआती चरणमा मजा वर्षा कराइन नै सकल हो। कोशी प्रदेश मनसे फैलल सोमबार के गण्डकी प्रदेशसम्म पुग्ल सफेन यी भेगमा समेत मजा वर्षा हुइन सकलक हो। मनसून समेत बलगर निहुले कोर्से बाली लगैन स्थानमा फे तापक्रम कम हुइन सकल के हो। कुछ बेरमा घाम लग्न अवस्थामा काठमाडौँ आसपासके पहाड़ी जिल्लामा फे अत्याधिक गर्मी महसुस होइत रहलबा। कमजोर रहल मनसून शुक्रबार मा नेपाल के पूर्वी भूभाग फिटी नेपाल प्रवेश करल के हो। कमजोर उपस्थिति के कारण भित्रैटी समेत फे सरदर मिट्टी से फे समेत 6 दिन ढिला करके नेपाल अलग मनसून अब फे कमजोर अवस्था में समेत देश के समेत विचरण करना तापक्रम रलक जल तथा मौसम विज्ञान विभाग के सोमवार जारी करलक दोसरो मनसून विशेष बुलेटिन मार्फत जनागिल बा। अत्याधिक गर्मी बढ़ल पाछे धनगढ़ी उपमहानगरपालिका से आपन क्षेत्रभित्र रहल सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय में 4 दिन विदा देना निर्णय करल बा। उपमहानगरपालिका के शिक्षा शाखा से जारी करलक सूचना अनुसार कुछ दिन यहां बढ़ती रहल गर्मी के कारण विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पारा सकना संभावना है मद्देनजर करती ऊ निर्णय करलक हो। सूचना में जनाएल अनुसार धनगढ़ी उपमहानगरपालिका भित्र संचालन में रहल सबकू जन सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय में असार 9 गते से लेकर असार 12 गते समके बीच में पढ़ना सार्वजनिक विदा सहित के 4 दिन पढ़ना लिखना बंद करलबा। विदा के समेत अत्याधिक विद्यार्थियों घर ही सुरक्षित रहना और अत्याधिक गर्मी से बचकलाक आवश्यक सतर्कता अपनैना अभिभावकों समेत आग्रह करगिल बा। कैलाली में धान लगैन शुरू हुई बेला डीएपी मल के अभाव में किसान हुक्र समस्या परल बाटै असार में शुरू हुई संगे लगैना में बिप्याल किसान हुक्र लगैना पाछे आवश्यक पर्ना रासायनिक मल सहज रूप में नहीं पाके उत्पादन में असर पर्ना चिंता बढ़लबा। किसान हुक्र सहकारी मार्फत सहुलियत दर में मल नहीं पाइल पाछे निजी एग्रोभेट तथा भेटनरी पसल मन से महंगा मूल्य में खरीद करना बाध्य बताइएलबा। सीजन के समय में हरेक वर्ष दोहरीना मल के अभाव में किसान उखरा थप चिंतित बनल बाटे। कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड सुरपश्चिम प्रदेश के प्रबंधक नवल सिंह भुगती के अनुसार हाल डीएपी मल के मौदात ओराइल बटैलबाट उहाँके अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा केल कैलालीमा 14,562 मेट्रिक टन यूरिया 8,236 मेट्रिक टन डीएपीओ 731 मेट्रिक टन मल पोटास वितरण करल बतुटियालबाट खोजहरूमा एक घरी विश्राम विश्राम पाँच फेरसै बीच सुन्तिर बीच सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
4: वर्षिनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड़ बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुरहेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान
1: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। के तपाईँ चाया, डन्डीफोर, दाद, एलर्जी, कपाल झर्ने समस्याबाट पीड़ित हुनुहुन्छ?
0: अब टिकापुरमा रहेको मनिष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू यही असार 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन मनिष मेडिकल हल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
1: मनिष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू: अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या, छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने, इक्जेमा, सोरियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने,
0: डाक्टर आउने दिन असार 13 गते दोस्रो शनिबार,
1: छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनिष मेडिकल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। साथै प्रत्येक दिन एमबीबीएस फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट, छाती, मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ।
0: स्थान मनिष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर 1, कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 98600-71024 र 98046-77417। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग से पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण में जोरगिल जर्मन कंपनी के नेपाल के प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा मनिन्द्रा राज मल्ल विरूद्ध के फे भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुआ। सिद्धार्थ पासपोर्ट ठेक्का लेना जर्मन कंपनी भेरी डोसा के नेपाल के प्रतिनिधि हुई। कांग्रेस सांसद सुनील बहादुर थापा के छावा समेत हुई। उमनाहा मल्ल जर्मन कंपनी के म्यूल बहर के नेपाल के प्रतिनिधि फे हुई। मल्ल है अख्तियार से पकड़ाव करल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर नगर पालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख विवाद के पेशी 22 गति के लग सरल। सुरपश्चिम प्रदेश सरकार के आंतरिक मामला के बजट शिक्षा में टीकापुर में बजट न्यून। मनसून में वर्षा से फे समेत तातुल गर्मी। गर्मी बढ़संगे यहां के जनजीवन प्रभावित। ओबीआर लगाइना समय में कैलाली में डीएपी मल के अभाव। किसान उकरण समस्या बीता बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकी खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुनते रह राम राम।
5: टिकापुर अस्पतालमा अपाङ्गता पहिचान, स्वास्थ्य परीक्षण तथा पुनस्थापना, निशुल्क घुम्ती शिविर हुने बारेको सूचना। विकलांग मित्र समूह, अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्थापना केन्द्र र सिद्धार्थ बैंकको आयोजनामा 18 वर्षसम्मका शारीरिक अपाङ्गता भएका बाल बालिकाहरूका लागि अपाङ्गता पहिचान, स्वास्थ्य परीक्षण तथा पुनस्थापना घुम्ती शिविर हुने जानकारी गराइन्छ। घुम्ती शिविरमा जाँच गरिने अवस्थाहरू: जन्मजात खुट्टाको पैताला भित्र बाहिर फर्केको, आगोले पोलेर अङ्गहरू एक आपसमा टाँसिएको, खुट्टा लुलो वा कमजोर भएको, भाँचिएको, हड्डी बाङ्गो भएको वा हड्डी नजोडिएको, हड्डी पाकेर लामो समयदेखि टी पाइरहने, ढाड बाङ्गो वा कुप्रो भएको, औंलाहरू एक आपसमा टाँसिएको वा बढी भएको, ओठ तथा तालु फाटेको, शरीरका विभिन्न जोर्नीहरू दुख्ने, सुनिने, बाङ्गो भएको वा खुस्किएको, अर्थोपेडिक सहायक सामग्री तथा मङ्गहरूको आवश्यकता भएकाहरू। घुम्ती शिविर हुने मिति 2083 असार 12 गते। स्थान टिकापुर अस्पताल। समय बिहान 9 बजेबाट। अस्पतालबाट दिएको कुनै कार्ड, रिपोर्ट वा लगाउन दिएको सहायक सामग्री भएमा लिएर आउनुहोला।
6: थप जानकारीका लागि राजा

0: सुरक्षित भविष्यको आधार हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलालीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: तहरा राजा जी का दिलुआ टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलुआ टूट जाई।
1: उफ बल्ल घरक भीटा निखौराइदा
2: मुस्कान सिथाई घरक भीटा आमी निके निउराइ छ कि का खेतो मस्ता खारन कला मिनी ले जाई पर्ना रह
1: आब दो उराइदा दान्ती बादर
2: ले ले मै मिनी बना कर भेजी है तू ले जा दियस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भित्ता मत बिला को बा माटी ले सब दिए पर का हाँ सब दियो। अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटो छाई
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल।
2: अरे लेव हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान मत सब का डरलस लेव हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपुआ करलस कर
3: ना क्या काकी तो मुस्कान निया क्या का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास का न सुटाई हल सब निकल आखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो ता
1: बैठा
3: ओ काकी मुस्कान भलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप फाफर बना दी ता वो हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकर कटला हाथ भर नहीं चला ना
2: बैठा भैया सबको कटला था आंजर पांजर चीर का इंजेक्शन ले तान का अथवा मुंह ले सूस का बीस पोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबको कटला था आंजर पांजर कटना डगना सूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबको कटला था मर लगा दी उठा ना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानु बुझनु
3: बिना ताकि रामेश्वर मोटरसाइकिल लेखा आई कही झट्टा से झट्टा साधन खोज कर एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए सेक जाए कल से मुस्कान होना झट्टा चुमर बनाई सेक जाए जा जाए का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम्हें डाटा हम कह कर हेरा पुरल हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुल हमार गांव से तो मिर्सहेत स्वास्थ्य संस्था में कुछ सर्पदंश उपचार कही जिना रही हो वहाँ ले जाए पुरल मुस्कान हमें
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई
3: ले ले ले काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में बैठा रही का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कला से मुस्कान हना बताई सीख जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहां कौन सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकिल स्थापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबो काल मोल के खा समझल साफ फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखा सकले से मुकर सपो विषार अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यही समय में उपचार कर से दिल कल से सपो डसलक मने यहाँ बताई सक दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर से दिखा सपा दशलक मने यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र मने जा डाली यही ले उ मने एक जिनकी बताए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए से दिखा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गतिलो ठाउं से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कॉपी हेरी थी ना कबू पेंसिल हेरी थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अपनी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: बिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: आज त पहिला नोकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
2: तनखा खाइकन होइन बुवा, तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु। हो भने बुवा, पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ मित कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, तमिरे आमाका रिटायरमेन्ट समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
1: ठिक गरिबा, आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
2: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, होइन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मी सम्पर्क हरे।
3: कार्यक्रम छोट मिठ साताके बुधबार दिनके एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
4: जब देखनो तो हिन
3: है। यदि मन परत हुई कल से अपन मनन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण, वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई, और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 091-5162-55 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: चौबीसै घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा, सब वाहन सेवा,
1: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा, मेडिको लिगल सेवा,
0: सब परीक्षण सेवा, सर्पदंशको उपचार,
1: 12 लक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा इकाइ,
0: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा, एआरटी सेवा, टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा।
1: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488, सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97-62-48-35-28, उपेन्द्र शाह 98-21-60-24-57 र अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत सरोज चौधरीको फोन नम्बर 98-57-85-63-22 खबर गर्नुहोला वा टिकापुर अस्पतालको क्यूआर कोड मार्फत अनलाइन सुझाव गुनासा रेकर्ड गराउनुहोला।
2: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उनेना पट्टा नि पैना त
3: अजि गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन ल बाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाइ
4: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फे बना जाए मोबाइल नंबर 98-684-41-208 ओ 98-486-39-261
5: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज कहा कना हो बाबा फिर उस गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराती रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहे आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
4: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि त अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकनासो कहाँ हुन्छ र कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसक्यो कसो कालले छिटो नलाग्यो
5: होइन चाइनिज माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेको छ के भएको छ हो तलाई
4: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लाग्या लाग्यो हुन्छ खानै सक्दैन
5: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
6: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
7: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठकरौला रोड टिकापुर कैलाली

जय गुरु बाबा। घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपनी के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़ के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम अंताक्षरी अपनी के लक्ष्य से लाख के बैठक सबको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संघ स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहो माई मिशन अमी क्या बैठक में बैठ के साथ भेटे बाबू रत्नापुर मगर और मई बाटो अपनी अपने संगठन माई मिशन सघारी कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसने बाटू जे जहां हुई भी खतो में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में विपटाल में यात्रा में जहां रहे से भी कार्यक्रम में सहभागी जनाई। दोपहर की समय हो, दोपहर की समय है, अलसी समय है, कुछ हदसम रमाए रोकर एक लग दोपहर के समय है, कुछ हदसम रहरंगीत कर एक लग कार्यक्रम में सहभागी जनाई कर भी सुनने का नब्बे 5 61 256 अर्थात 0919561255 लाइन एकदम खुला बाका नमय प्रकरण जानकारी करना चाहम विशेष करके अपने होकन तो कार्यक्रम में सहभागी जनाइटे कर भी कार्यक्रम में आईटे कर भी अपने को हमारे रमाइल सहभागिता भी करना मैं अपने जानकारी करती बाटो तो फटाफट चाहिए डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाइटे कर भी 0919561255 के लाइन खुलाई क साइकिल से क का की कुकू के असाइकल से अ आ ई ई ऊ कोई भी अक्षर से थारू नेपाली भोजपुरी गीत गायक लग आई भी अपने गायक गीत मैं नहीं गाई पाइना मोर गायक गीत अपने नहीं गाई पाइना अपने कमर गायक गीत तेसरो पर्सन के कलर गाई नहीं पाई नहीं कार्यक्रम यही नियम हो यही नियम भीतर रहे कार्यक्रम में सहभागी जनाते कर भी तत्सम कार्यक्रम के शुरुआत में श्री गणेश के रिक्त रमाइलो गीत से गीत के पास में इन्हें बाटू डायल करते कर भी 0919561255 लाइन खोलेगा

हजुर पिहा मरे जैही पिहा मरे जैही ए हो लानी देही पिहावा सिन्दुरा बजार बिल्कुल रमाइल कार्यक्रममा जोली हर रात हर दिन तोहार समझना जीना मुश्किल बा तोहार बिना संग जीना संग मरना कसम भेखाई दी संगे जिया भी संग मरा भी बिल्कुल रमाइलो गीत जोली कार्यक्रम में रोशन दत्तनिया और संगीता चौधरी की आवाज में रहे एकदमै रमाइलो गीत कार्यक्रम में सहभागी जनाए अपने फिर 91.5 61.255 अथवा 0919561255 लाइन एकदमै खुला बा फटाफट डायल कर दी कार्यक्रम में सहभागी जनाए भी अपने हमारे रमाइलो सहभागिता रही का नाम है अपने जानकारी करती बारू तब फटाफट चाहिए अपने हम डायल करते कर भी 91.5 61.255 खेलाने एकदमै खुला बा कार्यक्रम में सहभागी जरा एक ऐटे कर भी कार्यक्रम में सहभागी जन ऐटे कर भी का नाम है अर्जी करम काटी कार्यक्रम में विशेष करके अंताक्षरी खेले आय पर्ण रह कल से की कुकू के असाइकल से अके थारू नेपाली भोजपुरी गीत गाइना हो तीन चोट अपने गए तीन चोट मई गए मोरगाल गीत अपने गाए पे अपने गाल गीत मई नहीं गाए पे अपने को मोरगाल गीत तेसरो पर्सन के कलर गाइनी पही ये चाहिए कार्यक्रम के नियम हो यही नियम बेहतर है कि कार्यक्रम में सहभागी जनाई जी का नाम जानकारी करती बात हो तो फटाफट डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनाते कर भी अपने हमारे रमाइलो सहभागी तरी दुपहरिक समय अल्छी समय है कुछ सत्सम रमाइलो करेक्ला कहती फ्रेंड्स एन्जॉय कर बैठा रमाइलो गीत से गीत के पास मैंने बात डायल करते कर भी 91.5 61.255 लाइन खोलेगा।

0: हजुर, म यही बोमोरे सजनी लैके चुरिया कंगना बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रममा जोली कार्यक्रममा बाटोमा मिशन भर्खर रेडियो खोलली बिकेरसी इहो कार्यक्रम अन्ताक्षरी अपन गलत बाटोमा मिशन निकै साथीहरु बाबु रत्नपुर मगर और अपने के चाहिँ गीत गाइने इच्छा रहल जुरे रहल सब रहल सँगै रुगाइ सिक्ति सँगै रुगाइ आजकल काम के बेला बा बर्खा के समय बा पानी कोनी पर्थ्यो अपने एकदमै अप्ठ्यारो हुई थी खेतवाला गैना किसान दाजुभाइ एकदमै अप्ठ्यारो हुई थी समस्या हुई थी पानी बिना के खेतवाला गैना का कहाँ समके हाम्रो मोटर पानी के इंजन से कहाँ सम हमरे चढ़ाई सक जाए कुलो के पानी कहाँ कहाँ लगती बा कुलो में पानी कठक बा पकड़े से जब सम वर्षा के पानी नए वर्षा तब सम खेती करल हसक फेन नहीं लगा तमारे घाम फेन वस्ते बा हुई और काम के चाप फेन वस्ते ही बा तो जी जहाँ हुई भी कार्यक्रम में कहीं सुन के साथ भी कार्यक्रम में सहभागी जने भी अपने हमारे रमाइलो सहभागिता रही रमाइलो गफी अपने हमारे रमाइलो बातचीत ही करी फिर 1:45 बजे सम अपने हमारे संगे यात्रा कर भी सहभागी जने भी का नाम चाहम कहेगी अपने कुकन संगे हमें गप करना थी कोयल बटे लाइन में बोल करना चाहम के उठे कहाँ से हजूर राम राम
1: राम राम हजूर
0: सीताराम नारायण जी हो
1: हजूर
0: कसिन नारायण जी के हाल खबर
1: बड़े
0: बात अपन अपने मजा बा नारायण जी खेतों में पेल गिली की नहीं पेल हुई अभी
1: अरे क्या करना हो खेतों में तो पेल ली ना सक खेतों में तो पेल ली काली से बिहार काटते ही प्रसाद है ना अब बिहार काट कुट के अब जो होते नहीं मिल सक मन ही पहला ग्राहक बला लगते हैं ना तब मारे तो बवाल हो अब काल कहा लगाप कह दी
0: ए तो कहो तो खेतो लगाए बाजी तो खेतो काम खेतो जतना बेलाम तो अब खेतो लगाए पड़ल का हूँ एक काम तो छोड़े पड़ला दोनों हाथे में लड्डू कराई दी तो फिर अफ्यारो हुई का हूँ
1: का करना लास्ट का करती काल कर लगातार दो रोज लगा दे कह तू बिहार तक दो रोज कटे तो दो रोज लगा दे लगातार वही आइडिया लगे पानी पे नहीं पुगत हो एक दो ईरा लगा के फायदा नहीं हो पानी कम चोरी और बोरिंग नहीं हो हेरी सब का करने सतमत कुलम पानी आएल बा भिजत भिजत तो सुखा लगा पानी हलल नहीं पुख तो हमारे लगातार दतक जगह भिजा ली लगधारे दो दिन लगा दे कहती वो हमारे
0: बिहार कटुआ मैंने कट्टी बात नहीं कहो नहीं
1: हजूर हजूर बिहार से जनगर नहीं थी दानती जी दो जो कट्ठे तो पर आप कटरा कटे ही बीजे में घामे में
0: हजुर
1: ओके लगातार
0: दूजे कट्ठी बात नहीं लगी है दूजे जा रही है कि आप ढेर जा रही है
1: अब कह पर मजूर है लेब भी एक बीच हो
0: दोस्त बिहार के कम ही पर लगी लगे ही मैं मन इनके लगे
1: फिर बिहार काट लगी आइडिया
0: लगाए पर ओके कोई बात नहीं खुशी लागल खेतन पेल गिल बाटी पानी के समस्या बा कुलवा मन पानी आई था पानी पे चढ़ाई थी भी जमा पहले बार समसमुख सूख लेट हुई पानी नहीं
1: हजूर
0: तब जाके गोदगाट गोदगाट गोदगाट जब सम वर्षा के पानी नहीं रहा तब सम खेतवा लगाया सकते नहीं लागत नहीं जब सम वर्षा के पानी बरसत तब जाके ठनी खेती जमकल हंस लागत ओके तो अब ठके कहाँ से हमन समझ लिया भाई
1: मैं अपने गांव से कह पड़ल
0: अब गाँव ही में बात नहीं ओके कार्यक्रम में सब आगे जानी आज अंताक्षरी खेलना हो अंताक्षरी तो अपने नहीं खेलती तरफ एक तो गीत तो जरूर सुनाई थी नहीं
1: हजूर हजूर
0: ली शुरू कई धारी अपने के गीत सुने के लग हमारे आतुर बाटी
1: गीत गाने हजूर ये गाँव में हजूर
2: हमारे मोहल्ली जी लेकिन ना अनुबंधित गीत गाड़ा
0: अपने के अपने ग्राहक आएगी नहीं की का नारायण जी
1: ग्राहक आएगी नहीं ग्राहक आएगी नहीं अब ग्राहक आएगी नहीं अब क्या कहूँ अब
0: गीत नहीं हाँ हाँ गीत नहीं गई थी
1: अब मने आएगी नहीं तो
0: ओके ओके लीली ठीक है बाबे लग विदा हुई राम राम
1: राम राम
0: वहाँ ठके रिक्शा वाला हुई था हमारे नारायण जी अब रिक्शा देखल हुई तो यहाँ से वहाँ पुगे ना कई रुपये ले वो कहना मेरा बात फैन हुई लागल रही तब मारे वहाँ गिर गए ना एक्चुअली समस्या हुई लागल खेलक नहीं कोई बात नहीं और बेला जरूर कहीं कहना मैं जाम काटी अठी तो गीत जोड़ गीत के पास है मैं फैन से डायल करते कर भी सुनने 91 565 लाइन खुले बता समय ई रमायल गीत अपने हुकन के लगा

0: हजुर, रमाइलो गीतकी पाँच पञ्च स्वागत कार्यक्रममा कोइटेल फोन लाइन नालबाट नम्बर गर्न चाहन् के उरे कहाँ से म उहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, राम राम।
1: राम राम।
0: के बोल्ली कहाँ से?
1: दुर्गौली से, कमल चौधरी।
0: दुर्गौली से कमल चौधरी। कमल जी, का हाल खबर?
1: एकदम बढ़िया बा, अपन सुनाई।
0: हमारे एकदमै मजा बा, कौजा करके दिन बीते खास कल कमल जी के।
1: ए सर, का करबी हरी, खेतों में से भरखर आयला की हरी, खाना खाई।
0: ए खेतों में तेल गिल बाटी हो?
1: हजुर हजुर।
0: ए कहिया से लगाइना शुरू कर ली कमल जी?
1: ए वही गिल लगभग तीन दिन हुई गिलास
0: शुरुआत करल नहीं।
1: हजुर हजुर।
0: और खेती बाहेक और कौजा कर थी?
1: ए खेती बाहेक गाड़ी चले।
0: आजकल तो पानी ओनी नहीं पड़ते कमल जी, कसे की खेतवा लगाना संभव हुई था? खेतों में पानी मतलब
1: कुलवा चला छे,
0: कुलवा में चाहे पानी टना टन बने।
1: हजुर हजुर।
0: पानी छिनिक छोरा तो नहीं हुई?
1: नहीं नहीं हुई छे।
0: ए पानी को हो एकदम पर्याप्त मात्रा में बा, पानी चाहे पुक्ती बा वही को हो?
1: पुक्ती बा, पुक्ती बा। ओके,
0: कैले वही सन लगेली हमरे?
1: हमारी दूसरे लेवाई में।
0: ओके, कार्यक्रम में सहभागी जन लिए खुशी लागल। आज गीत गई ना कार्यक्रम हो, अंताक्षरी खेलना तैयार बाटी नहीं?
1: अंताक्षरी खेली पड़ी सर।
0: अब अंताक्षरी खेलना कार्यक्रम हो, खेलक पड़ना तो हो, अपने विचार का बा?
1: अंताक्षरी नहीं खेली कर दूं मैं तो।
0: अंताक्षरी नहीं खेला तो कौजा करी थे? अब कुछ कुछ तो करेक्ट पड़ल का हूँ नहीं, अब आई गिल बात।
1: अब अपने तो अब गाने में फिर नहीं भी नहीं कर रहे, कैसे चल रहा ना।
0: चलो कोई बात नहीं, कार्यक्रम में सहभागी जनाने लिए एकदम खुशी लागल। कार्यक्रम में अपन काम के बावजूद फिर समय छुट्टिया के कार्यक्रम में आदे लिए खुशी लागल। अब भाई हम एक गीत बजाब कमल जी, अपने लग अपने किन किन सुनाई चाहबी नाम ली?
1: मोरी ये जतरा बिहार लोग नाते मेरे खुशी नाते समक्ष संघरिया उग्रन जी जी सुनता हुई वनन के लग।
0: अब बजना गीत सुनना चाहती नहीं?
1: हजर। अब गाना चाहिए तो व्यक्ति कर मन पर आई दें ओकरे लग फोन से करल हो
0: ली बताई मैं संभव हुई तो वो गाना बजाई सके। हम कौन गीत सुनना चाहबी?
1: कैलाली बवनिया वाला गाना बजे।
0: ओके, टीकापुर खोजनु नहीं?
1: हाँ।
0: ओके,
1: हाँ हाँ हाँ।
0: टीकापुर खोजनु, नारायणपुर फे खोजनु, धर्मापुर और प्रतापुर में फे खोजनु। ये गीत तो हुई
1: सर, एक और लाओ निकल आजकल कैलाली बवनिया बाजार में तुम्हार घर बा।
0: कैलाली बवनिया में वो तुम्हार घर बा? नहीं,
1: वो तुम्हार घर बा। हाँ, वो तुम्हार घर बा भाई।
0: अगे ली मैं ये चाहिए संभव हुई तो बजाइना कोशिश करम नहीं। अब एक लग चाहिए विदा हुई। राम राम।
1: राम राम।
0: वहाँ फोन कर रही हमार कमल जी दुर्गौली से रमाइलो गप फिर वहाँ के फरमाइश के गीत तो रोज नहीं। कैलाली बवनिया में ऊ तोहार घर बा सिर्जना चौधरी की आवाज में रहल गीत हो। अभी गीत एक्चुअली पुरान गीत हो लागत में सृजना चौधरी की आवाज में कैलाली बवनिया में ऊ तोहार घर बा गीत तो मैं बुझत हूँ, तर ई गीत हमारा अवेलेबल बा कि नहीं कना लागल तो तब फिर मैं कोशिश करम ई गीत बजोना। और अपने कृपया हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाई इकसठी शून्य एकानब्बे पांच इकसठी दुई सौ पचपन्न अर्थात 0915612555 नंबर हो। ई नंबर में डायल कर दिया कार्यक्रम में सहभागी जनाई दिखा नाम हार्दिक कार्यक्रम एकदम घाम बा गर्मी बा गर्मी में चाह शीतर शीतर महसूस करे लग चाहिए अपने कार्यक्रम में सहभागी जनाबी शून्य एकानब्बे पांच एकसठी दुई सौ पचपन के लाइन एकदम खुला बा। हमन कमल जी फोन के लिए रहें कैलाली बवनिया में ऊ तोहार घर बा कना गीत चाहिए जोर दे हो सृजना चौधरी के आवाज में रहल, तर वो गीत हमारे संभव हुई तो बजेना प्रयास करब। वो गीत हुई फैसे कि नहीं हुई से कि नहीं, तर वो गीत एक्चुअली कन्फ्यूज लगता मीन। चलो कोई बात नहीं, गीत जोड़ब गीत के पास हम इन्हें बाटू डायल करते कर भी शून्य एकानब्बे पांच एकसठी दुई सौ पचपन लाइन खुलेगा।

0: खोजत खोजत राजापुर तक खोजिन
1: कहाँ से खोजलू है गोचुआ
0: अबे बताएं अरे टीकापुर खोजिन नारायणपुर फे खोजिन धर्मापुर और प्रतापुर में फे खोजिन खोजनो जाके थापापुर में खोजनो जाके मोहनपुर में फे होय मोर मन परल होय होय होय मोर मन परल मन रखनी भेटेनु जोशीपुर में होय मोर

0: खर्चा
1: खजनो मतिया बढ़े पोर में रजनो शंकरपुर राजपुर में फेर
0: मन पर
1: मोर चाहल है।

0: अरे क्या बात भगोरी
1: बच्चू पैलैनो मैं पुरु पैलैनो खोज खोज सारा मनहारा मझैनो
2: जतिके
1: योहर वोहर न्यांगनो मैं दुनिया भर घूमो तोहर हसमन रखनी कहूँ नहीं भेटैनो
3: लाखों हजारों में तू ही मन परिनो मैं भेटो ठाव ठाव में टक्कर चलैनो
1: कबूल लाल बोझे चर्रा।

0: हजुर उहाँ गीत खोज्ले रही गीत चाहिँ ठक्कै नै बजा पैनो गलक क्षमा करबी गीत खास क्षमा एभाइलेबल नै हुल सायद लाग्दैन और तमारे कमल जी है भाई और गीत बजाई पैनो ये गीत फेन मेहन लागत अपने के चॉइस में नहीं पड़ना मैं ठक कई सर्च करे बाद यही गीत मिल गई मैं अपने म्यूजिकल फाइल क्लिक कर मारू कोई बात नहीं हो और बेला में जरूर है हमने कोशिश करब कहती अठी के व्यापारिक विश्राम और जय विश्राम के पास मैंने बात होते छोड़ के कहूँ फिर डायल करते कर भी सुनने 91.5 लाइन खुल लेगा
1: ना छावा सांप कुछ नहीं कराए सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गए कुछ कराए वो सब कुछ सांप बिखा थे
2: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी हिंदा दाई
3: लिया नेपाल में पा जिना बिखा सांपन के विषय में सुन एक थोड़ा था जो खास कह रातिक समय में घर भीतर बैठ से ई कटला से निबाई फिर सैकत तर कटलक पाछ दे भाग जो निचलना कह सास फैर जो निसेकना में से लक्व हो सकता और डोम जोन बड़ा रिसाह में रिक निकर फाट फूले डोम सांप दिन व रात दुनू में देख पड़ना वो खास कह संध्या बिहान देख पर्स निकर कटल से फिर लक्वा हुई से था वो और कैली जातक सांप निकर कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर्र से बैठे था रकत फिर पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सबको भूभाग में पा देना बगोपने न फुनकार ना बाधे सांप ई सांप दसलक बेरमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा
4: बर्खा छ्या अनाज भिटिना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ध्यूर बिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिवेर सापन का दसाई का घटना ध्यूर बिना कर लग पा जाए
5: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: राम इ लड़का फिर कब्बू का पिए रही था कब्बू पेंसिल ले रही था कब्बू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस तीन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठो से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कॉपी हेरी थी ना कबू पेंसिल हेरी थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक सौ सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: आई हो बड्डो घर कहिया से जइबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नहीं करत का कहीं ना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बने लबाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ रा घूम जाए ता था पाए
4: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
5: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26
6: बैंक ले कभैलाई कसै अवस्था मिले तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ को गोप्य विवरण माग्दैन यदि कसैले कसै माध्यम बठियाईलाई तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई ठग्दो खोज्जाछ सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरू उनीहरू विवरण मागी भर बैंकमी सोधौ सतर्क रहौ ठगी बठिए बसौ
7: सिद्धार्थ बैंक बठियाई जनहितमी जारी सन्देश
8: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सदैव भरिलाई
9: हजुर व्यापारिक विषान के पास फैंस स्वागत बा कार्यक्रम में बाटोमा मिशन में के साथ थे बाबू रत्नापुर मकर संगा हमारे बीजा मंगना बेला हो गिलबा अब लगभग समय नई रही गिल अब टाटा बाबे के जाना बेला हो गिलबा तब मारे अत्रपट रेडियो सुन के साथ धन्यवाद कल करके साथी अपने सब जन धन्यवाद और मौसम एकदम गर्मी बा गर्मी मौसम एकदम अपन स्वास्थ्य ख्याल करती काम करती काम के बेला बा तो ये काम चाहिए अपन स्वास्थ्य ध्यान देती सरसफाई ध्यान देती पानी एकदम पर्याप्त मात्रा में पीबी और ख्याल करती जहां रवि स्वस्थ रवि व्यस्त रवि मजे रवि कहती अंतिम एक ठो रमाइलो गीत छोड़ती टेक्निक बैठ के साथी है बाबू रत्नापुर मगर धन्यवाद देती अंतिम एक ठो रमाइलो गीत छोड़ती मैं मिशन आएगा चाहे राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पास सुबह रहे रेडियो टीकापुर एफएम सुनते कर भी

0: सूर्य जोगाऊ पानी का मुहान बचाऊ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौं हरियाली बढ़ाऊ चुरेको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको आधार हो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लम्की कैलालीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
1: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सकी जबसम हाम्रे सक्कु भ्रष्टाचार विरोधी नै हुइबी भ्रष्टाचार करुया मनै नखुल्के विरोध गरी भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करकलाक सबको जाने सहयोग।

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया न करा रेडू बिगड़ी
3: नहीं का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगवा का
0: थारू गीत के बाहर प्रतिभा आने अपने के मन में जोन प्रतिभा आई था वो प्रतिभा सुनाई लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल से सुनाई लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।

0: लाइक किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
1: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
2: चुरे जोगाऊ, पानीका मुहान बचाऊ, वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौं, हरियाली बढाऊ, चुरेको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो, समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको आधार हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लम्की कैलालीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: कार्यक्रम छोटमिट साताके बुधबार दिनके एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
4: जब देखनो तुहिन है,
3: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनेना चाहती, कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत, गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुठो कारण, वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई, और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के सुना, तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915162655 साधा की बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी भी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: दाई नाच बा कहाँ जाए लग दो
1: सब लगता चर्पी जाए टुका
0: ए रुको ना तो पोछी नो कला से मई टॉर्च लाइट वो लट्ठी दिए तू लेख जाओ
1: का चीज चुनू लट्ठी वो टॉर्च लाइट
0: का कर रही दाई राजिक बाला बाहर निकल पड़ला से वो टॉयलेट जाए पड़ला से जहाँ फिर टॉर्च लाइट बार खा को लम्बा लट्ठी देख के ना जाए पड़ता का कर की बरखा छट बा सांप रह से था टॉर्च का उजाले सांपन दिया खसे गई था वो लट्ठी ठेक ठेक आवाज सुनकर सांप भाग था
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हम ना स्कूली मैडम सर नुक सांप नुक इतना ठाव सी न्यांग पड़ला से वो काम कर पड़ला से जहाँ फिर ठप होशियार भी पड़ता गई खा सीखे लगा था आम छटवा दुभा झपास अथवा ध्यान घास चलक ठाव में न्यांग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठेक ठेक बजेटी न्यांग पड़ता गई खा कल बात
2: सात बरखा छाटक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था मौसम में आपन बसारा में पानी पैसना पीला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
1: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लगह आई सक विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकती था
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी

0: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कूट पीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जाय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
2: सामाजिक सञ्जाल मी निकेरी जाची बुझी भर बैंक को आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलो हरु कसैले लिंक खोल्लाए अगाडि त्यो क्या को लागि हो, कहिले पठाएको हो रे, कहाँ जान्छ, निकेरी बुझी भर खुल्याको वेबसाइट को URL चेक गरौं।
3: अप्रिय घटना हुन नदिनलाई समय समय मी आफ्नो पासवर्ड बदलौं। आफूलाई केही शंका लागेले बैंकलाई छिट्टै खबर हरौं।
4: सतर्क रहौं, ठगीबाट बचौं।
3: सिद्धार्थ बैंक पठाई, जनहित में जारी संदेश।
5: सिद्धार्थ बैंक, संबंध सदैव भरिलाई।

0: राम ई लड़का फिर कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस टपाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। वित्तीय साक्षरता कक्षा पायल पासे महिला उद्यमी बनती, कमाइल पैसा से घर चलना के साथ विदेश के कमाई फिर बचत करती। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चलती रलक पहल राष्ट्रीय महाधिवेशन के बंद सत्र शुरू। मेडिकल शिक्षा अध्ययन के लाख विदेशी विद्यार्थी उकरण के कोटा बढ़ेना सरकारी तैयारी। मनसून माफे वर्षा से फे समेत तातुल ढेर, गर्मी बढ़ती गये पासी जनजीवन प्रभावित। स्वदेश में नई रोजगारी करी वैदेशिक रोजगार में जैना जैल से नई हुईल से सही सूचना और सिर्फ सीख के केल जाए कहना नारा के साथ टीकापुर में मनोसामाजिक परामर्श सेवा और वित्तीय साक्षरता कक्षा संबंधी सरकार वाला हुक्रम अंतरक्रिया करगिल बा। टीकापुर नगर पालिका की निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी ओड की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में वित्तीय साक्षरता कक्षा लेहल पासे अपना हुक्रा के जीवन में परिवर्तन आयलो आय अर्जन के काम में लागल मेहरू ट बोटोले बाटे। वित्तीय साक्षरता कक्षा वैदेशिक रोजगार में रहल परिवार के सदस्य हुकर महिला हुकर नई विदेश में कमायल पैसा कैसे की बचत करना हो, स्वदेश में नई आय अर्जन करके आमदानी के स्रोत कैसे बढ़ाई सक जाए कहना विषय में सिखा जाए। वहां हुकर फजूल खर्च घटना, खर्च और आमदानी के हिसाब किताब धरना, अनावश्यक क्षेत्र में हुईना खर्च घटना के बारे में सचेत समय ठुल बतैतियाल बाटे। यी वर्ष टीकापुर में दुई ठाव में वित्तीय साक्षरता कक्षा संचालन करगिल बा। वित्तीय साक्षरता कक्षा में सहभागी टीकापुर सत्तिके विपना गुरूंग, जीवन में परिवर्तन आयलू विपना से दैनिक जीवन में आईपर्ना व्यावहारिक बात में फे रकम के महत्व के बारे में बुझलक बटोईती, सिप सिक्के केल विदेश जाईपर्ना कहना बात फिर सिखाल बटोईले बाटे। विपना के श्रीमान शुरू में विदेश जायबेर तालीम बिना गैलक बटवागिलवा। वहां विदेश में ढेर कठिनाई काम कर पर्ना, पाछक पटक विपना से सिर्फ सिख के खेल विदेश जाय पलट कहना सिखाइल पाछे स्वदेश लौटलक विपना के श्रीमान। अब तालीम लेके गेल बाटे, मजा कमाई होती रहल बा। वित्तीय साक्षरता कक्षा पाछे विपना फे टीकापुर नगर पालिका से दैगिलात बेड बांस के फर्नीचर निर्माण संबंधी 45 दिन के तालीम लेहल बाटे। तालीम पाछे सत्ती में वहां रोजगारी फे पायल बाटे। अब विपना के कमाई घर खर्चा चलती रहलो, दैनिक जीवन चलाइना सहज हुई। उहाँकार थरिया समेत कमाइल पैसा बचत करती रहल बटोईले बाटे। विपना जस्ते टीकापुर नगर पालिका वार्ड में दुई कोठापुर के सीता चौधरी फे वित्तीय साक्षरता कक्षा लेहल पाछे जीवन फेरगिल बटेले बाटे। थरिया वैदेशिक रोजगार में कमाई में समेत बैठलक, सीता है तालीम पाछे खर्च और आमदानी के लेखाजोखा सिप सिख के रोजगारी समेत बनना कहना ज्ञान हुई पाछे वहां फे मेडपा कार्यक्रम अंतर्गत तालीम लेहल बटोईले बाटे। शुरू में सिलाई कटाई तालीम लेलक औरक पसल में काम करते रह सीता। अब अपना टेलर व्यवसाय करते बाटे, पसल में मजा आमदानी हुई रहो। दैनिक 5 जने नियमित रूप में समेत सिलाई कटाई के काम वहां सिखती रह बाटे। वित्तीय साक्षरता कक्षा में सहभागी ढेर महार उकरण के जीवन परिवर्तन में आयल बा। टीकापुर के अश्नेरी के औरा सीता चौधरी फे वित्तीय साक्षरता कक्षा ले में सहभागी हुई पासे नास्ता पकैना तालीम लेहल रहे। वहां अब लगक रलक विद्यालय में समेत भान्से पद में रोजगारी करना सलाह पासेकल बाटे। सीता खाना पकाइबेर बिजुली के बचत कैसे करना, आगी के बचत कैसे करना, अपना सुरक्षित कैसे रहना, बाल बालिका हुकरण गलत डगरा में लगना से कैसे जोगैना कहना सीखते रहल बटैले बाटे। सक टीकापुर एक नया टीकापुर के उर्मिला खड़का फिर विदेश म समेत जाइबेर पासपोर्ट केल चाहत कहना बुझल रहें। वित्तीय सांस्कृतिक कक्षा में सहभागी वासी विदेश जाइबेर और थप कागजात फेर चाहल म ज्ञान मिलाल बटोले बाटें सामी परियोजना के समेत रिटर्नी स्वयंसेवक धनबहादुर बुढ़ा मगर विक्रम सम्बत 2070 साल मन से निरंतर वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित वहां के परिवार के साथ जीवन के लाग सामी कार्यक्रम में काम करते रहल बतवाई थी। 13 वर्ष के आगे वैदेशिक रोजगार के सुरक्षा और अब के वैदेशिक रोजगारी में जो यहां के अवस्था फेरगिल बटोले बाटे टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष मोहन लोहार बिका सामी कार्यक्रम से वैदेशिक रोजगार में गैल परिवार हुकरण सुरक्षा और वित्तीय समेत बचत में सहयोग करते हाल बटोले बाटे। वार्ड नंबर 7 के वार्ड अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद नेउपाने हमारा समाज में पुरूष हुकरण के अधिकांश विदेश में नेपाल में रलत हुकरण रोजगारी और कुछ कृषि में कर्म में समेत लागल हो कुछ गलत डगरा में लागू औषध दुर्वेशन में फसल हुकरण में चिंता व्यक्त करते बाटे। सदर टीकापुर नगर पालिका के रोजगार शाखा प्रमुख दिनेश राज शर्मा फे अब्बा पालिका से एकीकृत रूप में सीखमूलक तालीम देना प्रयास करते बतोई थी। संघ संस्था और सदर सरकार के कार्यविधि में समेत आशिकलक वर्ष सहकार्य करके एकीकृत रूप में उद्यमी बनना चाहलक सीखना चाहल हुकरण के लाख तालीम अवसर समेत सृजना करते रहलक बटोले बाटे। कार्यक्रम में संघ संस्था के समेत उपशाखा प्रमुख अमृता रावल जनता कृषि सहकारी संस्था के व्यवस्थापक चेतराज कुंवर मेतमा कार्यक्रम के सहजकर्ता मीना आचार्य लगायत से सुझाव दिले रहे। कार्यक्रम संचालन सामी कार्यक्रम के मनोसामाजिक परामर्शकर्ता मीना कुंवर से संचालन कर रहे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चितवन के भरतपुर में चलती रहल पहल राष्ट्रीय महाधिवेशन में बंद सत्र शुरू हुई। बंद सत्र में राजनीतिक स्तक सांगठनिक आर्थिक लगायत के तमाम प्रतिवेदन प्रस्तुत करती रहलक हो। लौव नेतृत्व चयन के प्रक्रिया आगे बढ़ेना कार्यतालिका रहल बा जोन अंतर्गत अनुशासन आयोग के प्रतिवेदन उसकर कामांतर उसकर रिमाल से वो समेत अगर पास पार्टी के वित्तीय प्रतिवेदन के कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी से प्रस्तुत करना कार्यसूची रहल बटवागिलबा उसकर के पार्टी के महामंत्री कविन्द्र बुर्लकोटी से संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना बाटन कल से पार्टी के केन्द्रीय समिति समेत से पारित विधान संशोधन प्रस्ताव है सह महामंत्री विपिन कुमार आचार्य से प्रस्तुत करना बतागिलबा। स्पष्ट निर्देशिका नै हुक बार बार कार्यविधि फेरे परलो किसान हुकरण के आधिकारिक सूचीकरण नै हुइन जैसिन कारण समेत दूसरे ताथा बाठा हुक केल कृषि अनुदान में दोहन करती रलक बताएगिलबा। कृषि अनुदान जहां करलबा वहां के विषय के खोजी हुई पर्ना पारदर्शी हुई पर्ना और वास्तविक किसान से अनुदान पाए पर्ना कहती चौतर्फी आलोचना और दबाव बढ़ल पाछे सरकार वर्तमान सरकार ई विषय में छानबीन में चासो देखाइलबा। कृषि वन तथा पर्यटन मंत्रालय से आर्थिक वर्ष 2072-73 एहार के वितरण करल कृषि अनुदान के छानबीन करना सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहाल के संयोजकत्व में कार्यदल गठन कर सकलबा। खोज घरमा एक घड़ी विश्राम पाछे फेर से एबी सुन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ। प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
1: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
1: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
1: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
1: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-42-73। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
4: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल।
5: अरे का करुरी बुढिया, कठुवा खोजत खोजत परे सान हो गेल बाटु। मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का
4: मिस्तरान वर्जन उकना घर हेरो ना कटा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओष्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो ना कबु कहुरा घुम जाए त थापाए।
0: यूपी भिसी ब्रांड के

0: वहाँका द्वार पार्टिसन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नई बिग्रना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नई ना विशेषतः हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98 48 51 43 26।
2: नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कन्सल्टेन्ट न्यूरोसाइकोट्रिक डाक्टर आइनोडिन बागवान
3: यही असार 20 गते तेस्रो शनिबारको दिन
4: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
2: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिजो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने,
4: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
3: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार।
5: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।
6: याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
5: सम्पर्क फोन नम्बर 98 68 80 00 08 र 98 25 63 77 72।
0: विश्राम पाछि फेर से स्वागत बा। सरकार से मेडिकल शिक्षा में अध्ययन के लाख विदेशी विद्यार्थी उन के कोटा बढ़ेना तैयारी करल बा। मंगर के दिन संघीय सांसद के राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति के बैठक में बोलती शिक्षा सचिव चुड़ामणि पौडेल से जानकारी करैले खोई। वहां मेडिकल शिक्षा अध्ययन के लाख नेपाल आइन चाहल विदेशी विद्यार्थी उग्रह सबसे ढेर आकर्षण रलक उर्से वहां उक्रत के लाख कोटा थप करना नीतिगत निर्णय लेना तैयारी करते रहल सरकार से स्पष्ट बालबा। वहां नेपालमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न उया विद्यार्थी उक्रन के लाख स्टूडेन्ट भिसामा सहजीकरण गर्न कथा विषयमा फे गृह मन्त्रालय सँगै बात हुइति रहल बतैले बाटे। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेट में आंतरिक मामला मंत्रालय के बजेट शिक्षा और सामाजिक संघ संस्था के भवन निर्माण में विनियोजन करल पागिल बा। आर्थिक मामला मंत्रालय से सार्वजनिक करल आर्थिक वर्ष 2083-84 के वार्षिक विकास कार्यक्रम में उल्लेख रहल अनुसार आंतरिक मामला मंत्रालय से करीब 19 करोड़ बजेट मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र लम्कीचोहा नगर पालिका के विद्यालय और संघ संस्था में दार्गिल बा। ऐसी के समेत विभागीय मंत्री से पे असंतुष्टि जनैत रहल बाटे। मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के निर्वाचन क्षेत्र और लम्कीचोहा नगर पालिका में बजेट ढ्यार रहल बा। विनियोजन बजेट अनुसार फे इस क्षेत्र में पूर्वाधार विकास के काम में कार्यान्वयन होना करके 61 करोड़ 68 लाख रूपया, शहरी विकास मंत्रालय ओर से भवन निर्माण कार्यालय से 10 करोड़ 6 लाख रूपया, खानेपानी में 23 करोड़ 52 लाख रूपया, सामाजिक विकास मंत्रालय सामाजिक विकास कार्यालय वन से कार्यान्वयन हुईना करके 21 करोड़ 66 लाख रूपया, आयोजना में समेत बजेट विनियोजन करल बा। तीन ठो कार्यालय मन से केल लम्कीचोहा नगर पालिका हो। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में 1 अरब 36 करोड़ को योजना डालल देख परल बा। डोटीमा एकजना अवैध भरूवा बन्दुक सहित पक्राउ परलाटै जिल्ला प्राधिकरणले डोटीके अनुसार जिल्ला के एक ठोकेल निर्वाचन क्षेत्र मा समेत एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रहरी से कार्यवाही के क्रममा एक व्यक्ति अवैध रूपमा भरुवा बन्दुक सहित नियन्त्रणमा लेहेलके हो। पक्राउ परल व्यक्ति हुकरन के नाम हो, ठेगाना प्रहरी से सार्वजनिक नै करल हो। प्रहरी से पक्राउ परल व्यक्ति हुकरन के व्यक्ति के साथमा एक थान भरुवा बन्दुक बरामद करल बताइल बा। कैलाली कंचनपुर मनसे प्रहरी से भन्सार मनसे नुकुआ के लंटीर लड़क सामान नुकछुप के लन्ना सामान नियंत्रण में लेहलबा। कैलाली के तमाम स्थान धनगढ़ी उपमहानगर पालिका साथ जोखरताल र गहौ भजनी नगरपालिका दुई गौनहिया मनसे अवैध रूपमा भन्सारमा से छली कर्गे लन्तिरलक अन्दाजी मूल्य 1,07,600 बराबर के सामान प्रहरी से बरामद करलबा उप स्थान मनसे भन्सार छली कर्गे बीडी मोबाइल ओस्तक ग्लास प्लास्टिक के झिल्ली लगायत के सामान रहल प्रहरी से जनायलबा। खोज घरमा गरी विश्राम विश्राम पाछे फ्रेन्डसेभी सुन्तिर बीच सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
7: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
8: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
0: विश्राम पासे फेर से स्वागत बा। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला के दुई ठो मुर्गी फार्म मा बर्ड फ्लू डेक परल बा। पशु सेवा कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोक के जिल्ला के बनेपा नगरपालिका 13 सांगा स्थित के बद्री खत्री के समेत लॉयर्स कुखुरा फार्ममा ओसक पनौती नगरपालिका 7 स्थित के मनेश्वरी एग्रो फार्ममा पालगिलक बक्ती मुर्गीनमा बर्ड फ्लू हिल पुष्टि करगिल बा। कार्यालय के प्रमुख बज्रा किशोर ठाकुर से खत्री के लॉयर्स फार्ममा मुर्गीनमा असार 3 गते बर्ड फ्लू पुष्टि हुई रहा। ओसक पनौती स्थित के शर्मिला श्रेष्ठा के मनेश्वर एग्रो फार्ममा पालगिल बक्ती लोकल मुर्गीमा असार 7 गते बर्ड फ्लू पुष्टि हुई के हो। नेपाल प्रवेशमा रलक यी वर्षा के मनसूनी प्रणाली भित्रैती रल बेरा कमजोर रलक शुरूआती चरणमा नै समेत मजा वर्षा कराइन नै सकल हो। कोशी प्रदेशमा फैलती रलक सोमबार के गण्डकी प्रदेशसम्म पुग्ना यी भेगमा समेत मजा वर्षा हुने सेक्लाक बटवागिल बा। मनसून बलगर समेत नेहुला कोर्से बडलना ओस्तक स्थानमा यी तापक्रम वृद्धि हुइती रलक बाकलसे कुचबेर घाम लग्ना काठमाडौँ के अवस्था फे आसपास के पहाड़ी जिल्लामा समेत अत्याधिक गर्मी के महसुस हुइल बा। ओ कैलालीमा धान लगाइना शुरू हुई बेला डीएपी मल के अभाव के कारण किसान हुक्रा समस्यामा बाटै असारमा शुरू हुई संगे बिहार लगाइना बिप्ट्याल किसान हुक्रा रोपाई संगे आवश्यक पर्न रासायनिक मलमा सहज रूपमा नै पहिलो कोर्से उत्पादनमा असर पर्न चिन्ता बढ़लवा। यह समाचार संगे खोज खबर रायल जैना से पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से वित्तीय साक्षरता कक्ष रहल पासे महिला उद्यमी बनती कमाइल पैसा घर चलैना के साथ ही विदेश के कमाई फिर बचत करती। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के चलते अलग पहल राष्ट्रीय महाधिवेशन के बंद सत्र शुरू। मेडिकल शिक्षा अध्ययन के बाद विदेशी विद्यार्थी उपकरण के कोटा बढ़ेना सरकार की तैयारी। ओ मनसून में सेफे समेत तातुल गर्मी बढ़ती गर्मी बढ़ल पासे जनजीवन प्रभावित। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 6 बजे नेपाली भाषामा खोज खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुनतिर विराम राम।

0: भयाको मंगलसूत्र बन भाँची गयो।
1: यो टिका लागि त सामुएल ज्वेलर्स बनेको है, बरु अहिले जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
0: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो, छोट त बाई जाउँ।
2: सामुएल ज्वेलर्स सुनचाँदीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचाँदी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर त्यहारी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868-44-1208, 9846-39-2061।
3: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
4: कोट पीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नाई देना, बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई।
3: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
4: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
3: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
5: आज तिमी मेरो वरीपरी किन घुम्दैछौ छोरी?
6: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
5: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
6: मेरो खुत्रके छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
5: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
6: न्यू असम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू असम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टीकापुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिना रासनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 9868-14-799, 9824-60-25-32। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 9824-60-28-25।

0: जारी।
1: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमबाट जनहितमा जारी सन्देश।
2: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सकी, जबसम्म हाम्रे सक्कु भ्रष्टाचार विरोधी नै हुइबी, भ्रष्टाचार करुया मनै नखुल्के विरोध गरी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग, सक्कु जाने सहयोग गरी।
3: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: चेली हेदी दै बालाई लोटी पड्यो भने क्या बैंकको विवरण दिए पैसा खातामी आइ जान्छ भन्यो
1: धैदै बा तुमले लोटी भर्राई थ्या ब
2: आछिन क्या हो रे चेली लोटरी पड्या त निको हो बा
1: कभै नभर्या लोटी कसरी पड्न्छ बा ईशा मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर काइमीले आयाले कभै जनपतिया फोनै आयाला गई आफ्नो विवरण कभै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कभैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहितमी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
4: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: काफे कबू का पिए रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गतिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनंद झोला जस का टस बातिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98 484 22 373

0: नरेश दादू मैं तो अपना फोन आई की डर से आ गई नो है भौजी कहाँ बाती
1: ओ गोंदी में सुतल बाती बाबू चोली न हो रही
0: भौजी कहाँ से काटल अपना हरक आदर पावे तो सफा सुखर बनाई लो बाटी का सर फिर काटी तो जा रहा ना अपना हन
2: यहाँ पोली ऊपर कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है ना खबर तो करना बाटा कटा देर में को आप ना
0: ना से भौजी हमरा बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा हना जिनसे नहीं दी वो नरेश दादू एम्बुलेंस में ना समझ लागे से था लगा के कोई मोटरसाइकिल बाक लाची उन्हें मैं बैठा कर भौजी है ना सर पर ऐसा उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला तो खाना जात है दिए न्यू इट ना स्वयं सेवी का दीदी
0: हो अब ना ठीक करी डॉक्टर और निकट सम जनमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएकला सपवा कटलक अंगाना स्थिर बनेना प्रयास करो पठा तम्म कस बेलक लुगा गरगहना घरी पेटी मुंडी बाकल से पफर करा दी बेरमने अपेले से झन समस्या बिना बेलक से बेरमने आना शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खब बनना के कठ असी कर से रक्त संचार में समस्या हुई सकता यही ले करबेल सपवा दसलक शरीर का भाग काट खाक पौन अवस्था थे आई सिक्ठा
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता मनाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेट दिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रांगका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: ए रुक रुक रुक
7: के भयो किन कराएको यस्तो
6: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
8: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
7: हो र
6: हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
9: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 1-2-3 ह्यास डायल गरी वा एन्सेल एपमा गइलिनुहोस् एन्सेल नेपालकै लागि